0: वहां जाना उसी के पास है। लअल्लहुम यज़्ज़करून।
1: या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ।
0: सूरत अन्नूर, नूर का मतलब है रोशनी, और अगर सूरत नूर पढ़ी ही न जाए तो रोशनी कहाँ से आएगी। इसमें खास तौर पर ख्वातीन के लिए रोशनी है, बहुत सी हिदायत हैं। सबसे पहली आयत है सूरतुन, एक सूरत है, अंजलनाहा जिसे हमने नाजिल किया है, वफरजनाहा और इसको हमने फर्ज किया है यानी लाजम करार दिया है। इसके अहकामात जो हैं उनसे फरार नहीं। वअंजलना फीहा आयातन बय्यनातन, और इसमें हमने बड़ी वाज़े आयात उतारी हैं कि कोई कल ये ना कहे, बहाना ना करे, हमें तो समझ नहीं आई थी कि अल्लाह ताला चाहते क्या थे। नहीं, बड़ी वाज़े बातें हैं। किस लिए है? लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम सबक लो, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। ये लफ़्ज़ी तर्जुमा नसीहत पकड़ो, ताकि तुम्हें याद दहानी हो जाए। जिक्र बमाना याद दहानी। कुल लिल्मुमिनीना, कह दीजिए मोमिन मर्दों को, यहुद्दू झुका कर रखें, मिन अबसारिहिम अपनी निगाहों में से, वयहफ़ज़ू और हिफाजत करें, फुरूजहुम अपनी शर्मगाहों की, ज़ालिका ये बात, अज़का लहुम ज्यादा पाकीज़ा है उनके लिए, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला, खबीरुन बाखबर है, खबर रखने वाला है, बिमा यस्नऊन साथ उसके जो कुछ वो कर रहे हैं। इस आयत में मोमिन मर्दों से खिताब है और अगली आयत में मोमिन औरतों से। आप जानते हैं कि कुरान पाक के बहुत से अहकाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मर्दों और औरतों के लिए बराबर तौर पर कह दिए जाते हैं, लेकिन वो अहकामात जिनमें खुसूसी ताकीद की जरूरत होती है और मर्दों और औरतों के हुक्म में भी कुछ फर्क होता है, उनको अलग अलग बयान किया जाता है। जिसकी एक मिसाल तो यहाँ सूरत अन्नूर में है, एक और मिसाल सूरत अल हुजरात में है, सूरत अल अहजाब में भी खवातीन का नाम लेकर मर्दों और औरतों दोनों को अलग अलग तौर पर कुछ बातें बताई गई। इनमें से ज्यादातर अहकामात माशरती जिंदगी से मुताल्लिक हैं। इरशाद बारी ताला है, कुल लिल मुमिनीना, ईमान वालों को कह दीजिए, क्या करें, यहुद्दू मिन अबसारिहिम अपनी निगाहें पस्त रखें, झुका के रखें। कुरान पाक में तो ये हुक्म आया, आगे देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया। जैसे कि आप जानते हैं कि एक कुरानी आयत की तफसील फिर कहां से मिलती है, आपके कौल से या अमल से या तकरीर से। जैसे कि कुरान पाक ही में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह अनजलना इलैका ज़िक्र, हमने आपकी तरफ जिक्र नाजिल किया यानी कुरान, लितुबय्यना लिन्नासी, ताकि तुम बयान करो लोगों के लिए, मानुज़िला इलैहिम जो उनकी तरफ उतारा गया है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज में से है कि आप लोगों के सामने कुरान को खोल कर बयान करें, उसको अमली तौर पर लेने के लिए क्या होना चाहिए और किसी भी मखसूस आयत पर अमल किस तरह होना चाहिए उसका आप तरीका बताते हैं। तो अब हम देखते हैं कि निगाह का इस्तेमाल कैसे हो।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत ख़्वाब नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: समर नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 17/5/2026 का प्रोग्राम है, तो इस वक्त लाइव है, हमारे साथ है मास्टर याकूब साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डेनमार्क में चेयरमैन है। इस वक्त वो पाकिस्तान जो गए हुए हैं, तो पाकिस्तान ज़ाहिर है या तो बैरिस्टर साहब के मिलने गए हैं, या मियां साहब को मिलने गए हैं, या अपने निजी दौरे पर गए होंगे। वो मां साहब जाते रहते हैं अक्सर। मां साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं।
3: ना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो मैं ईद का मतलब मौका है, ईद कुर्बान का, तो मैं हमेशा इधर आता हूँ और आकर कुर्बानी करते हैं, तो दिल खुश होता है। क्यों, ईद के मौके पर ही लोगों को मिलने का मौका मिलता है, अपनी फैमिली को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। इंशाल्लाह ईद करीब है, तो इंशाल्लाह एक दो जानवर खरीदेंगे। मैं एक बैल खरीदता हूँ, दो बकरे खरीदता हूँ, तो मजे से अपने घर में इधर कुर्बानी होती है, दोस्त यार आते हैं, तो सारा दिन बड़ा मशहूर गुजरता है। दोस्त यार भी सारे इंतजार करते रहते हैं कब मैं घर आऊंगा, आप सारे खुश हैं। इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ईद कुर्बान जाए वो इंशाल्लाह।
2: आप पौधे लगाते हैं, पौधे लगा के आ जाते हैं, उसके बाद बकरियों के लिए आप अच्छे अच्छे फ्रूट बकरियां खाती हैं, इसी तरह आप अपनी पार्टी के लिए पौधे लगाते रहते हैं, और सारी ज़िंदगी आपको हो गया है अपना मुस्लिम लीग नून में, तो सारी ज़िंदगी गुजर गई है आपकी, और पक्के, जिसे कहते हैं पक्के सच्चे मुस्लिम लीग के हैं आप।
3: जी राजा, इंशाल्लाह पौधे मैं लगाता हूँ। अब मैं अपने घर के गार्डन में बैठा हूँ, यहाँ पर अमरूद के पौधे हैं, माल्टे हैं, और बड़ा लुत्फ आ रहा है, जामुन है, तो बड़ी ना छाँव अच्छी है, परिंदे भी चहचहा रहे हैं, तो मैं सुबह इनका पानी का बंदोबस्त करता हूँ, तो बाजरा भी डालता हूँ, तो मैं सारा दिन इधर रहता हूँ, ठंडा होता हूँ, तो ये एक बात होगी। दूसरी बात है कि इंशाल्लाह पार्टी के लिए मैं सारी उम्र काम किया है, और इंशाल्लाह यहाँ से इंशाल्लाह अगले जान को भी जाऊँगा, क्योंकि पार्टी को मैं पसंद करता हूँ। नवाज शरीफ साहब जो हैं मेरे बेहतरीन, मतलब है कि ये कह रहे हो कि मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, नवाज शरीफ साहब। तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने बड़े काम किए हैं जो सब लोग जानते हैं, तो वो भी पार्टी के लिए मुखलस हैं, तो हम इंशाल्लाह पार्टी के लिए मुखलस हैं। ना उदों की ज़रूरत है, ना कभी कभी किसी को बड़े लोगों को मिलने की ख्वाहिश की है, और ना ही कभी हमने कोई काम लिया है, ना ही कभी कि हमने कोई पैसा लिया, बस सिर्फ मोहब्बत से, शौक से। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी है पाकिस्तान के लिए मोहब्बतर पार्टी है, पार्टी के लिए बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, तो इसलिए मैं इस पार्टी को पसंद करता हूँ।
2: साहब, आप और मोहतरम बेग साहब पार्टी का एहसासा हैं, पहले मास्टर अपना मलिक साहब होते थे, आप उनके साथ होते थे, बेग साहब साथ होते थे, अब आप और बेग साहब जो हैं पार्टी का एहसासा हैं।
3: इंशाल्लाह हमने पार्टी का झंडा उठाया हुआ है, बेग साहब जो हैं वो भी मेरे बहुत मुखलिस हैं, और हम का वो जो है
2: जी, बेग साहब कप्तान है जी, कप्तान है वो,
3: वो हमारे कैप्टन हैं, तो इंशाल्लाह वो सा काम कर रहे हैं। अब उधर 28 मई आ रही है, तो इंशाल्लाह वो तैयारियां कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो मनाएंगे, मैं तो उधर नहीं हूँगा, लेकिन आप सब मिलकर आपको भी दावत दी, आप तुम्हारे क्योंकि इसलिए नहीं कि आप रेडियो पर बैठ जाए, क्योंकि आप कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन हैं, और इसलिए हम आपको बहुत इज्जत देते हैं, और हम समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आपने बहुत अरसा, एक लॉन्ग अरसा कौम की खिदमत की है, आपने रेडियो पर जो टाइम दिया है उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, हम हमेशा लुत्फानंदोज होते हैं, हम उधर से उर्दू सीखते हैं, सियासत सीखते हैं, बातें सुनते हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है, आप भी एक माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और इंशाल्लाह आप रहेंगे, और इंशाल्लाह उन लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि जो आपने, ठीक है जहाँ भी इंसान काम करता है तो कुछ चलो आमदन थोड़ी बहुत होती है, गुजारा इंसान करना, लेकिन आप फुल टाइम दे रहे हैं और बहुत सा कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत हो रही है, उनको उर्दू लैंग्वेज आ रही है, ये भी

0: सब लोग लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे लिए मतलब है कि बहुत हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी इज्जत हैं राज साहब। तो
1: साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी जरा नवाजी, आप हमेशा अच्छी बातें करते हैं, मुल्क और कौम की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं। मां साहब आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि आप बहुत दूर बैठे हुए तो पूरी फैमिली को हमारी तरफ से सलाम कहिएगा और जल्दी आप वापस आ जाएं।
0: बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह एक बार जल्दी वापस आऊंगा और सबको मित्र बहुत बहुत सलामे अकीदत पेश कर देना।
1: पेश की ईद मुबारक।
0: थैंक यू वेरी मच, खैर मुबारक।
1: सामाई नाज़रीन, ये थे मास्टर याकूब साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के यहाँ डेनमार्क में चेयरमैन हैं और उन्होंने ये अलम उठा हुआ है। बेग साहब हैं तो ये सरमाया पार्टी का, बाकी लोग भी जो हैं पार्टी के वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी काम कर रही है, चूँकि मुस्लिम लीग के लिए वो काम कर रहे हैं तो सभी काम उसी एक ही जमात के लिए काम कर रहे हैं, एक ही उनका लीडर है। सामाई नाज़रीन हमारे साथ साथ रहेगा, हमारा किसी से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है।

0: निकाला, उनकी जगह पे डीजी रखा गया रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को, और उनको सेम डे 2 घंटे बाद रख दिया गया, जो कायदे कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के भी तहत गलत है आर्मी के। तो जब उनको डीजी रखा गया, इनको निकाल दिया गया, तो एक बंदा आपने सर्विस में भी नहीं रखा। फिर उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्ट्री से उतरे हैं, उन्हीं को ही जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, उन्हीं को ही अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनके प्राइम मिनिस्टर उतरने के 7-8 महीने के बाद। तो फिर इन्होंने उनको टारगेट करके राइवल बनाया। इट मींस दैट ही वाज अ करप्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसकी डीजी आईएसआई ने चोरी पकड़ी, उसने सेम डे में 2 घंटे बाद ही लेफ्टिनेंट जनरल जो भी रिटायर है और कोर्ट मार्शल में भी आ चुके और उनका रिजल्ट भी आ चुका है, उनको 2 घंटे बाद अपॉइंट किया डीजी आईएसआई। इनकी चोरियां और गलतियां ना पकड़ी जाएं, तो अब जब इनको पता चला कि वो ही जिसको निकाला था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 7 महीने बाद बन गया है, अब अपनी हुकूमत वापस कायम करने के लिए और वापस लाने के लिए उसी को ही टारगेट करो फॉर नो रीजन, तो इन्होंने एक मिथ क्रिएट कर दिया कि जनरल आसिम मुनीर बिहाइंड एवरीथिंग है। अता के इसमें बिहाइंड बनता नहीं है, इट्स अ पर्सनल वॉर। ये पीटीआई के जो लीडर है उसका पर्सनल क्लैश था कि उनकी चोरी पकड़ी गई थी और करप्शन के वाले थे डीजीआई
1: आप देखे ना कि ये जो आए थे हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब जो है आजकल जो अपना कानूनी मामलात में जेल में है, तो देखे वो तो पढ़े लिखे थे, वो तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं।
0: अच्छा साहब, ये भी एक बकवास है, वो ये जरूर ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, लेकिन वो पढ़े कैसे हैं, वो स्पोर्ट्स कोटा में पढ़े हैं और वो सिर्फ बीए की डिग्री उनके पास है, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा में ही उनका एडमिशन हुआ था और स्पोर्ट कोटा में ही वो वहां पे पढ़ने के लिए गए थे। एक तो एडमिशन भी उनका स्पोर्ट्स कोटा में हुआ, तालीम हासिल करने के लिए भी, ट्रैवल के भी अखराजात उनके स्पोर्ट्स कोटा के थे, टिकट के भी अखराजात स्पोर्ट्स कोटा के थे, वहां पे जाने रहन सहन और तालीम हासिल करने के भी स्पोर्ट्स कोटा के अखराजात थे, और सिर्फ बीए की डिग्री उनके पास है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं।
1: लेकिन इसके अलावा देखिए ना, सहूलियात उन्होंने सारी जो है वो हुकूमत से ली, या उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, या उनके साथ जब क्रिकेट खेलते थे, कैंसर अस्पताल की जमीन चले सरकारी जमीन है, नवाज शरीफ फैमिली ने जो अपनी जातीय अकाउंट से भी उनको पैसे दिए, लेकिन जब भी वो बात करते हैं तो वो अपने किसी मोशन की बात नहीं करते, तो क्या बात है ये
0: राजा साहब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1975 पे ये स्पोर्ट्स कोटा पे पढ़ने के लिए गए थे, तब सदर पाकिस्तान भी जो थे वो पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब थे, ठीक है। और जब ये यहाँ से वहां स्पोर्ट्स कोटा में पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो 2 महीने के डिफरेंस के साथ वो वजीर आजम पाकिस्तान भी बन गए भुट्टो साहब। पीपल्स पार्टी की उस टाइम हुकूमत थी, जब इनकी हुकूमत आई तो उन्होंने तो पीपल्स पार्टी का रज के मजाक उड़ाया ना। और अब बात आ गई शौकत खानम की, तो मैं आपको इसमें जरा एक क्लियर कर दूं, शौकत खानम की जो जमीन है वो नवाज शरीफ साहब उस टाइम क्या पोजिशन रखते थे, और शौकत खानम का रिकॉर्ड किस तरह वजूद में आया, शौकत खानम बनी कैसे, इन सब चीजों का मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस और फर्क बता देती हूँ, ठीक है। देखें, ये वेरी क्लियर है कि शौकत खानम को जब लैंड दी गई है तो नवाज शरीफ साहब ने लैंड दी है, 50 करोड़ रुपया उन्होंने शौकत खानम को लैंड के साथ प्रोवाइड किया, इम्पोर्टेड मशीनरीज प्रोवाइड की और उनका ड्यूटी टैक्स भी माफ कर। अब इसके अलावा इमरान खान साहब का बता दूं मैं कि शौकत खानम जो हॉस्पिटल है वो तो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल जो के है वो गवर्नमेंट के नाम पे नहीं है, और पर्सनली तौर पे इमरान खान के भी नाम पे नहीं, ठीक है। शौकत खानम जो के है वो एक चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और शौकत खानम रजिस्टर्ड जो लीगल एंटिटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन पे हुई है 1860 में। इमरान खान जो के हैं मुझे उनका आज तक समझ नहीं आया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी हामिद मीर के प्रोग्राम में 31 दिसंबर 2015 में, तब तो इनकी हुकूमत भी नहीं थी, इन्होंने कहा कि तालिबान का लीडर जो के है उसने हमारे अस्पताल से अपना इलाज करवाया।
1: क्या कहा आपने, किसका इलाज करवाया?
0: इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी कि तालिबान के जो लीडर हैं उन्होंने हमारे अस्पताल से अपना इलाज करवाया, जिस पर हामिद मीर ने सवाल किया कि अफगानिस्तान के तालिबान की लीडर की बात हो रही है, तो इमरान खान ने जवाब दिया जी अफगानिस्तान के तालिबान के जो लीडर हैं उन्होंने हमारे अस्पताल लाहौर से इलाज करवाया, और इलाज करवाने के बाद मुझे शुक्रिया का खत लिखा। ये इंटरव्यू जो कि है 31 दिसंबर

0: 2015 का है, इमरान खान का। सबसे पहले तो हमारे अस्पताल में इमरान खान का कौन सा अस्पताल है, शौकत खानम तो नहीं है। देखे ना, ये बंदा अब इस तरह का इंसान है जो अपनी हुकूमत आने से भी पहले 2015 में ऐसी स्टेटमेंट्स दे के लोगों के जहन को पक्का करता रहा है कि मैंने ये काम की है। जब तक ना अंधे अंधे को आंखें नहीं मिलती ना, वो लाठी को खूब इस्तेमाल करता है। इसने अपना नाम गवर्नमेंट की जमीन पे बना हुआ ऑर्गेनाइज, जो अस्पताल और ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रजिस्टर है, उसको अपना नाम दे के अफगानिस्तान के तालिबान लीडर की फेवरनिज्म में स्टेटमेंट दी, और फिर ये कहा कि मुझे उसने शुक्रिया का खत भेजा। तो उस टाइम भी इसके इतने गहरे ताल्लुकात थे 2015 में कि इसको तालिबान का लीडर बकौल इसके स्टेटमेंट के उसने इसको खत भेजा शुक्रिया का। तो आप देखिए इसके कनेक्शंस कितने स्ट्रांग होंगे तालिबान के साथ।
1: चले
0: और
1: जैनिश,
0: फिर
1: आपने अच्छा काफी तफसील से जवाब दिया। जैनिश एक देखें कि 9 तारीख को एक तासर दिया जा रहा है यूरोप में कि ये जो लोग अपना जो है एहतजाज करते हैं, चूंकि हम जमहूरी आदमी इस मुल्क में कानून कायदे से एहतजाज होता है, अपनी मर्जी से तो कोई एहतजाज नहीं करता, जगह लेनी पड़ती है, पुलिस को बताना पड़ता है बाकायदा किस कौन सी तंजीम करा रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करा रही है, लेकिन एक तरफ तो पूरे पाकिस्तान में जरबे मार का हक का जो है प्रोग्राम किया गया, पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जो है किए गए, सब ने किए, और साथ ही उससे एक दिन पहले पाकिस्तानी अम्बेसियों के सामने जो है ये छोटा सा मुजाहरा भी किया, 9 तारीख को किया गया। तो एक तसर है कि कहीं आपको जिसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, कहीं दोनों तरफ तो नहीं बैलेंस रखना चाह रही।
0: राजा साहब, स्टैब्लिशमेंट एक ऐसे नकारा फजूल बकवास आदमी के साथ क्या बैलेंस रखेगी जो अपने मुल्क के तोहफे बेच बैठा है, जो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में कभी कहीं नहीं हुआ। आपको स्टैब्लिशमेंट ऐसे बंदे के साथ खड़ी लगती है? आप ये जो इत्तेजाज कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं कि इमरान खान की तरफ इनकी रिश्तेदारी है कि उधर से बहन बेटी आई हुई है या इनकी बहन बेटी उसके पास गई हुई है? इत्तेजाज किस लिए? पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोशन के लिए। पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कौन है? इमरान खान। इमरान खान कौन है? जेल में। जेल में जी क्यों है? क्योंकि उसके लीगल क्रिमिनल केसेस हैं। क्रिमिनल केसेस उसके कब से चले? 2023 से चले, ये 2023 से चलते आ रहे हैं। ठीक है, आप राजा साहब, एक क्रिमिनल आदमी जो क्लियर नहीं है उसके उसके ऊपर इत्तेजाज कर रहे हैं, तो ये उल्लू के पट्टे हैं जो इत्तेजाज कर रहे हैं? खोते के बच्चे क्यों कर रहे हैं इत्तेजाज? मुझे आप एक छोटी सी बात समझा दें। जद्दारी ने 10 साल जेल काटी है, 10 साल उसने ट्रायल फेस की है, 10 साल ट्रायल फेसिंग के बाद वो बाइज्जत बरी हुआ है, बाइज्जत बरी होने के बाद वो सदर पाकिस्तान बना है। उस दरमियान में कितने कोई जद्दारी के ऊपर इत्तेजाज आपने सुने हैं? वैसी के बाय क्रिमिनल है, एक क्रिमिनल है, वो उस क्रिमिनल एक्यूज्ड है, जब तक उस पे ये एक्यूसेशन क्लियर नहीं होता उसके ऊपर ये जाके कुत्ते के बच्चे इत्तेजाज करें करें हमारी तरफ से। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लें, एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी चीज है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके ऊपर एजेंसी की भी आंख है और सबसे बड़ी आर्मी की आंख है। एस्टेब्लिशमेंट कोई मजाक नहीं है कि राजे साहब किसी भी अल्फाज के साथ एस्टेब्लिशमेंट जोड़ के उसे एडजस्टेबल कर दें। एस्टेब्लिशमेंट कोई बंदा इंसान मखलूक नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। इस इदारे के ऊपर 70,000 आंखें और उस 70,000 आंखों के ऊपर ISI एजेंसी भी है, और यही कुत्ते के बच्चे जिसके पीछे इत्तेजाज कर रहे हैं उसी की मुंह की जुबानी बात है कि करप्शन पकड़ी जाए तो वजीर आजम गाली देता है, तो फिर ये उसी की जुबान को रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। एक ऐसा बंदा जो नारा लेकर आया था वी आर डिफरेंट, इसने दो नस्लों को एक कर दिया, जवानों को भी पागल कर दिया, बुड्ढों को भी पागल कर दिया, वो भी अन्य आर चपलियां जूतरियां जूतियां घर से छोड़ के इसके धंधे में नाचने के लिए चले गए। फिर इसकी हुकूमत आ गई, इक्तदार में आ गया। फिर इसके इक्तदार में आने के बाद इसका एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, उस रिकॉर्ड में इसके क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड्स भी आए, ये रिकॉर्डेड चीजें हैं ना।
1: तो
0: पहला
1: फिर ये 9 मई का
0: वजीर
1: फैसला
0: आजम
1: क्यों नहीं होता?
0: राजा साहब, हर एक रिकॉर्डेड ट्रायल का डेट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फैसला होता है, और जो कहता है कि पाकिस्तान में फैसला नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होता, तो इमरान खान को कत्ल कर देना कौन सी कोई बड़ी बात है? बेनजीर का भी तो कत्ल हो गया था ना, फिर इसको मार दिया जाता वो अच्छा रहता। और दूसरा कि वो भी अंदर से मुजरिम होके कह रहा है कि मुझे मारा, तो जनरल उसमें जो के जिम्मेदार होगा, वो भी तो यही चीखे मार है ना, मरने मराने की बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं कि कानून को फॉलो करें और हम कानूनी तरीके से हर चीज का इत्तेजाज पुरअमन करेंगे, ये नाम भी कानूनी लेते हैं, पुरअमन भी कानूनी तौर पर बोलते हैं, तो हर चीज का फैसला भी कानूनी ही होगा। वरना राजा साहब बेनजीर भी कत्ल हो गई थी, और बेनजीर से बेहतरीन लीडर कोई आज तक आया भी नहीं है, मेरी खुद वो फेवरेट रही है, तो बेनजीर भी कत्ल हो गई थी, कितना कोई उसके पीछे हंगामा हो गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी थी जब बेनजीर का कत्ल हुआ था। ये तो कैदी मुजरिम है ना। अगर मारने मराने की बात होती तो इमरान खान का भी उसी लिस्टेड में नाम चला जाता। फिर हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे फॉलो करें, फिर इस तरह फॉलो करना चाहते थे? आसानियां ना लोगों को पचती नहीं है, जो आसानी से गूंथ दिए जाते हैं ना वो अलग में फंसाने जरूरी होते हैं।
1: जैन शाह आपने बड़ी बातें की, पीटीआई की बात की और बड़ी सख्त की, बड़े खुल के की, बड़े दबंग लहजे में की, लेकिन आप ही तो पीटीआई का हिस्सा रही हैं।
0: राजा साहब, वो ही बंदा डिफरेंशिएट कर सकता है जो उसका पार्ट रहा हो। और मैं पीटीआई की वन ऑफ द मोस्ट लीड सपोर्टर थी 2016 में। इसमें पीटीआई की सपोर्टर जब मैं बनी हूँ तो तब ये पार्टी जो के थी ये धनों के अपने स्टेज कैटेगरीज में थी। उस टाइम जो यूथ थी, बिकॉज आई वाज 18 इयर्स ओल्ड एट टाइम, तो यूथ में बहुत
1: तो
0: प्रमोटेबल
1: यूथ की अम्मी नहीं थी फौजिया कसूरी साहिबा?
0: नहीं, हमारी तो अम्मी नहीं थी, इन्हीं की अम्मी होगी। बेसिकली मैंने पीटीआई को लेफ्ट इसलिए किया, एक तो इनकी तलफुज में, स्पीचेस में बदतमीजी बहुत थी लीडरशिप में इमरान खान की, हर किसी का मजाक उड़ाना, तू तुम तड़ा करके बात करना। दूसरा के इनका इंटरव्यू जो के था तालिबान की फेवर में 2015 वाला, वो मेरे नजर से गुजर चुका था। जब मैं इनको सपोर्टिव भी इस तरह नहीं करती थी कि पार्टी मीटिंग्स में जाती थी कि पार्टी मीटिंग्स में मैं जा रही हूँ या मैंने पीटीआई को वोट दी है, इस तरह सपोर्टिव नहीं थी। सिर्फ सोशल मीडिया फेसबुक की हद तक सपोर्ट मैंने किया था। जब इनकी ब्लफ स्टेटमेंट्स आई, बदतमीजी आई, इनकी हुकूमत आने से पहले मैंने पीटीआई को लेफ्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लीडर नहीं चाहिए जिसकी दो तरफा स्टेटमेंट हो, बदतमीजी हो। और इनकी धनों के ही दिनों में ना इन्होंने अवाम को शऊर बदतमीजी का, जहालत का और बगैरती का दी है। तीन शऊर इन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे दिए। पार्टी में भी इनके कोई खास इतने लोगों में तमीज नहीं है, साथ वाले बैठे हुए बंदे को पहले उड़ा देते हैं जो इनकी पार्टी का मेंबर होता है, तो बाहर वालों से इन्होंने क्या बात करनी। कुछ चीजें मुझे इतनी बारीकी से नजर आ गई थी कि 7-8 महीने के अंदर ही ना इनकी हुकूमत आने से पहले मैंने पीटीआई पार्टी को सपोर्टेशन लेफ्ट कर दी थी। आई वॉजंट अ मेंबर, आई सपोर्ट दैट पार्टी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक ही सियासी पार्टी थी जिसको मैंने सपोर्ट किया, आज तक उसका कुफारा अदा करूं तो कम पड़ेगा।
1: सने चले हम बात करते हैं, जो साबका वजीर आजम इमरान खान साहब हैं वो तो ऑक्सफोर्ड के एक पढ़े लिखे हैं, इसी तरह अगर हमारे आर्मी चीफ तो जो हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो की, और इनकी जो अगर मैं नॉलेज का या डिग्रीज का तयन किया जाए, मुकाबला किया जाए, तो आप क्या कहेंगी कि हमारे आर्मी चीफ पढ़े हुए हैं या इमरान खान साहब ज्यादा पढ़े हैं?
0: अजय साहब, सिर्फ डिग्रीज का क्यों, अचीवमेंट का भी मुकाबला कर लेते हैं। आपको सबसे पहले तो बता देते हैं कि इमरान खान साहब तो बीएड डिग्री है उनके पास, थर्ड डिवीजन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा में हुआ था, वो सारी फैसिलिटेशन उन्होंने स्पोर्ट्स कोटा से ली थी। लेकिन आप अगर जनरल आसिम मुनीर की बात करें ना, तो एक तो वो हाफिज कुरान है, सबको पता है, लेकिन इसके अलावा मिलिट्री कमीशन ग्रेजुएट है 17 ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से, प्रोग्राम मंगला, कमीशन इनटू 23rd बटालियन ऑफ द फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, ये इनका मिलिट्री कमीशन है। मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में उनका आ जाता है कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा से, मलेशियन आर्म फोर्सेस कॉलेज कोलालंपुर, फौजी स्कूल उन्होंने किया जापान से, एमफिल की डिग्री है उनके पास पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट से। और ये यूनिवर्सिटी इनकी जो है जहाँ से उन्होंने एमफिल की है वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद से। अब इसके अलावा राजा साहब, अगर आप उनके मिलिट्री अचीवमेंट्स में आ जाए, तो इसने तो बीए की डिग्री लेने के बाद बदतमीजियां की, गालियां दी, सबको सड़कों पे नचाया और वजीर आजम बना। मैं आपको उनका थोड़ा सा मिलिट्री रिकॉर्ड बता देती हूँ। आसिम मुनीर जो के हैं नंबर वन 2016 में, वो रहे हैं डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, और डीजी आईएसआई वो रहे हैं अक्टूबर 2018 से लेके जून 2019 तक, और कोर कमांड उनके पास पोजीशन रही है कमांडर ऑफ फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज FCNA की, और सर्व एज अ क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी 2021 टू 2022 नवंबर तक, जब वो लास्ट उनकी जो पोस्ट थी वो क्वार्टर मास्टर जनरल की थी पाकिस्तान आर्मी की, उसके बाद वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनी, ठीक है। और 2022 में ही उन्होंने माशाल्लाह इतनी जबरदस्त हमने जंग फाइट की है कि उसके बाद वो फील्ड मार्शल बने, फिर 27वीं तरमीम आ गई, फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। ये उनका सारा मिलिट्री कैरियर का शेड्यूल है। और दूसरी तरफ एक बंदा बीए पास है, वो गालियां देता है, वो क्रिकेट के अलावा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसी से प्रमोशन कर करके उसको वजीर आजम बना दिया जाता है। अगर राजा साहब मुझे कोई कहता है
1: लेकिन
0: क्रिकेट
1: देखे
0: प्लेयर
1: ना,
0: में
1: तो वो इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, गालियां देते हैं तो आर्मी चीफ गालियां तो नहीं देते? इमरान खान से क्वालिफिकेशन तो उनकी ज्यादा है।
0: सिर्फ क्वालिफिकेशन भी ज्यादा है, गालियां भी नहीं देते। और आज तक जो आर्मी के खिलाफ बोला गया है वो उसको हमारी जो DGISP आ रहे हैं उन्होंने हमेशा बड़े तमीज के लहजे में उसको डिफाइन किया है। और अगर उन्होंने किसी आम तो इसको नफसियाती मरीज कहते हैं, हमारे DGISPR ने कहा है, हमारी आर्मी ने कहा है, वो इस वजह से कहा है कि ये तालीम में भी डाउन है। प्रैक्टिकली जो इसकी जिंदगी का तजर्बा रहा है वो यही रहा है कि एक बंदे के साथ लगना, उसको इस्तेमाल करना और उससे हासिल कर लेना, इसी तरह ही। और जी मैं आपको बात बताऊं, जो बंदा इसके साथ लगा है इमरान खान के साथ डूबाई है, वो बेचारी पीर नहीं देखे हैं, उसका कोई दम दरूद ही काम नहीं आ रहा, वो कोई ऐसा दम दरूद भी नहीं पढ़ पा रही कि वो जेल से निकले। हम तो कहते हैं इमरान खान को तो दोबारा वजीर आजम बन जाना चाहिए, उनके पास तो पीर है, हमारे पास जी कौन से पीर है? हमारे आर्मी चीफ के पास कोई पीर नहीं है, किसी के पास कोई पीर नहीं है, उनके पास पीरनी है, वो पीरनी उनको मिली वो वजीर आजम बन गए। अब वो उस पीरनी के साथ ही दोबारा वजीर आजम बन जाए, कोई दम दरूद काम ही नहीं आ रहा। तो जहाँ दम दरूद ही काम नहीं आ रहा वहां पे हम क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते।
1: चलें, एक आपको अगर इजाजत दें तो आपके साथ ये रिलेटेड सवाल है कि आप जिन जिन के साथ आपकी दुआ सलाम रही और अब चले गए और आप बहुत बड़ी पोजीशन पे इस वक्त, तो आपने रबते और तलुकात जो हैं वो छोड़ दिए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है?
0: राजे साहब इस तरह की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पता था मेरे से ये सवाल होगा और ये नहीं पता था आपके प्रोग्राम से होगा, अगर यहाँ से हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है। राजे साहब मैं वेरी क्लियर ये बता दूं आपको, बल्कि सारे सुनने वाले सुन लें, जो इंसान 10 साल 15 साल कई सालों पहले डजंट मैटर मेरे साथ एक टेबल में जिसने भी खाना खाया है, मेरे पास कई सालों बाद भी अगर उसकी खबर आई है तो मैंने उसका साथ देना है, साथ देना है। गुफ्तगू में गुंजाइश इस वजह से कम हो गई है क्योंकि जब आप किसी बंदे के साथ गुफ्तगू में रहते हैं, आपके साथ उठता बैठता है, आपको उसके नेचर डिफरेंसेस और उसके हैबिट डिफरेंसेस पता चल जाते हैं। तो जब आपके नेचर और हैबिट डिफरेंसेस पर्सनैलिटी क्लैश में आ जाते हैं तो मैं ऐसी सूरत हाल में गुफ्तगू की गुंजाइश कम कर देती हूँ कि आपस में झगड़े और इख्तलाफात ना बढ़े। लेकिन अगर कोई भी ऐसा बंदा, ऐसे कई ओवरसीज में लोग हैं जो 10 12 15 साल से मेरे साथ स्टिल कॉन्टेक्ट में, और ऐसे भी कई लोग हैं जो कई साल पहले से कॉन्टेक्ट में थे, फिर उनके नेचर और बिहेवियर डिफरेंसेस की वजह से, स्पीकिंग प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने उनसे गुफ्तगू में आप कह लें थोड़ा गैप रख लिया। लेकिन ये भी बात सच है कि मेरे पास कई साल बाद भी एक खबर आई थी एक पर्सन की कि जी बड़ा प्रॉब्लम में, ट्रबल में, आपके साथ ही उठता बैठता रहे, इसकी आप हेल्प करें। तो उस टाइम मैंने उसकी जो जो भी हेल्प की है वो अल्लाह जानता है और बहुत से ओवरसीज के लोग इसके गवाह भी हैं। उस टाइम जो मैंने इसकी हेल्प की, मैंने एक शर्त पे की थी कि मैं इसकी हेल्प करूंगी, और इतफाक से रात के 4 बजे मुझे कॉल आई थी। वो जो मैंने उसकी हेल्प की, नेकी का दरिया में डाल, वो भी मैंने इसी तरह की एक नेकी की और दरिया में डाली। और अब उसका जो भी सर्वाइवल है, अगर किसी भी मेरे जानने वाले पे कोई भी प्रॉब्लम आता है, चाहे मेरा उससे ताल्लुक हो या ना हो, कभी ना कभी उसका मेरे साथ एक टेबल में खाना पीना रह चुका हो, तो डेफिनेटली मैंने उसकी हेल्प करनी है। ये मेरे प्रिंसिपल ऑफ लॉज है, ये मेरा नेचर है कि मैं कभी भी अपने साथ उठने बैठने वाले बंदे का साथ नहीं छोड़ती अगर उस पर मुसीबत आए तो। मेरा कोई क्लैश नहीं है। दूसरा कि ये मेरी वेरी क्लियर है राजा साहब एक स्टेटमेंट आपको कि मेरी उस इंसान के साथ बने या ना बने, गुफ्तगू हो या ना हो, जिसके साथ मेरा कभी उठना बैठना रहा हो, मैं उसकी दुश्मन की कतार में कभी खड़ी नहीं होती। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे आदमी पे जो आज आपके साथ अच्छी गुफ्तगू में है, कल आपका उसका रब्ता रद्द हो जाए और उसका कोई दुश्मन आपके पास आ जाए और वो आपको पैगाम दे के आओ मिलकर इसका नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों पे मैं लानत भेजती हूँ जो अपने साथ उठने बैठने वाले के दुश्मन की कतार में खड़ी हूँ। ऐसे लोगों को इंसानियत के भी नाते लानत भेजती हूँ मैं। मेरी बिल्कुल नेचर डिफरेंसेस हो सकते हैं, बिहेवियर डिफरेंसेस हो सकते हैं, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, कभी कभार गुफ्तगू मैच नहीं होती, फासले जरूरी होते हैं कि ताल्लुकात इज्जत में बरकरार है। लेकिन ये कभी भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि जिस इंसान के साथ कभी जिंदगी में मेरा उठना बैठना रहा है या हमने एक टेबल में खाना खाया, मैं उसके दुश्मन की कतार में खड़ी हूँ। 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब तक मैं जिंदा हूँ, उसके दुश्मनों की कतार में आप मेरा नाम नहीं सुनेंगे। ये एक मैंने फॉरएवर की एक लाइन प्रिंसिपल अपनी क्रिएट की हुई है अपनी पर्सनैलिटी और नेचर में।
1: जैनश, इंसान माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे की परवरिश करते हैं, बड़ा करते हैं, बच्चे बड़े होकर अपने अपने कामों में चलते, बड़ी तरक्की कर जाते हैं। तो हमने एक खबर पढ़ी देखी कि پروین شاکر صاحبہ جو بہت بڑی شاعرہ ہیں، بہت لوگ ان کو چاہنے والے ہیں، دنیا میں ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن میں کچھ دیکھا قبر کے معاملات میں کوئی اس طرح ویرانہ یا اس طرح کی لک آفٹر کے بارے میں ان کے بیٹے یا کوئی فیملی وائز میں بات کروں گا، یہ کوئی خبر میرے کانوں سے یا میرے ذکر کہیں ہوا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، چونکہ یہ آپ کا ایریا لگتا ہے۔
0: راجہ صاحب، جہاں پہ جس قبرستان میں اچھیڑ کے پروین شاکر کی قبر ہے، اسی رو میں میرے والد صاحب کی بھی قبر ہے، اسی رو میں۔ تو جب ہم ان کی قبر کراس کرتے ہیں تو آگے میرے والد صاحب کی قبر آ جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی جو پروین شاکر صاحبہ جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں، دنیا جان میں ان کے چاہنے والے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل۔ ان کی قبر کی صورتحال کئی مدت تک بڑی ڈسٹرب رہی ہے، کئی مدت تک رہی ہے، بلکہ وہاں پہ اس طرح سسٹم ہے قبرستان میں، کیونکہ بہت بڑا قبرستان ہے، اسلام آباد کو بڑا پرانا ہے، اب تو ادھر جگہ بھی نہیں ملتی ہے دفن کرنے کی۔ وہاں پہ مالی جو کہ ہیں، جن کے بچے اور فیملی ریلیٹیوز دور رہتے ہیں، وہ وہاں مالی ہائر کر لیتے ہیں اور ان مالی کو تنخواہ اور باقاعدہ طور پہ پیسے بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیاروں کی قبر کو مینٹین کروا سکیں۔ لیکن ان کا ایک مدت تک نا، کیونکہ ہمارا وہاں روز کا آنا جانا ہے، ایک مدت تک ان کی قبر نا بڑی وہ رہی ہے، مطلب مس مینج میں آپ سے کہوں گی، جی جی، کافی زیادہ۔ پھر اس کے بعد وہاں کے لوکل ریسیڈنٹس نے یہ اظہار کیا کہ ہم اس کو سر، وہ کئی مدت تک لوکل ریسیڈنٹس بھی آتے رہے۔ ان کے ایک صاحبزادے ہیں، وہ پروڈیوسر بھی رہے ہیں دیمک فلم جو کہ ہے اس کی، تو وہ صاحبزادے ان کے آئے تھے، وہ اپنی بچیوں کے ساتھ آئے تھے، پروین شاکر روڈ میں بھی انہوں نے پکچرز بنائی، ٹھیک ہے، سید، مجھے ابھی ان کا نام ٹھیک سے یاد نہیں، سید مراد ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، کیونکہ میرا یہ فلم انڈسٹری اور ان چیزوں سے بڑا دور تک ہے، میرا ان سے کوئی اتنا خاص نہیں ہے۔ سید مراد علی، اف آئی ایم ناٹ رونگ، تو یہی نام ہے ان کا۔ وہ جب ادھر آئے تو انہوں نے قبر مینٹین کی، اس کی صفائی کروائی، کیونکہ وہاں پہ اکثر جانور بھی ہوتے ہیں، تو وہ قبر مینٹین انہوں نے کروائی، اس کی صفائی کروائی۔ لیکن وہاں کے لوکل ریسیڈنٹس کو بڑا اعتراض رہا۔ 1952 کی پیدائش ہے، 1994 کو پروین شاکر صاحبہ انتقال کر گئی، تو 1994 سے لے کے اب 2026 تک بہت کم اس کا قبر کا مینٹینیبل ہے، بہت کم، مطلب مینٹین رہتی ہے عموماً۔ اب یہ ایک سال میں ایک آدھ بار یا دو بار یا تین بار آئے ہوں گے تو انہوں نے صفائی کرائی ہوگی، ادروائز وہاں پہ پھر دوبارہ اسی روٹین میں ہی ہے قبر، جس روٹین میں پہلے تھی۔ یہ آپ نے ٹھیک بات کی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ ان کے ریلیٹیوز کو اتنی اٹینشن نہیں ہے، جہاں تک وہاں کے لوکلز کو لگتا ہے، کیونکہ میرے والد صاحب کی بھی قبر ادھر ہے، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو وہاں کے لوکلز جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو اپنے پیارے ہیں وہ اس چیز کا دھیان اور احتیاط نہیں رکھ رہے۔
1: زینب شان، آپ کا بہت شکریہ، بہت تفصیل سے ہمیں آپ نے باتیں بتائیں، کھل کر بات کی، بولڈ بولیں، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔
0: ضرور، ایک اور میں پیغام دینا چاہوں گی،
1: جی ضرور
0: راجہ صاحب، ایک اور
1: ضرور۔
0: سب سے پہلے تو راجہ صاحب میں یہ ویری کلیئر کہہ دوں کہ آرمی آفیشلز اور گورنمنٹ امپلائڈ اور ہائی پوسٹڈ رینک جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے نادرا ڈاٹا ریکارڈز لاک رہتے ہیں، خاص طور پہ ان کی شادی کے بعد۔ تو یہ جو لوگ، جو اکثر ہمارے ابھی کیونکہ پروموشنز ہوئی ہیں کرنل سے بریگیڈیئر کی، اور بہت سے ان کے رائیولز تھے، بہت سے جاننے والے تھے، ایون کہ ہمارے رائیولز بھی ہیں، ساری دنیا میں سب کے ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے نادرا ڈاٹا ریکارڈز میں جاتے ہیں، اور جو امپلائڈ نادرا کے ہمارے ڈاٹا ریکارڈز اوپن کر کے ہماری پرسنل ڈیٹیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ میں بتاتی چلوں آپ کے انٹرویو کے ذریعے کہ ہماری پرسنل ڈیٹیل جس میں شادی، بچے، یہ چیزیں لاکڈ ہوتی ہیں، ان کو اتنی ایکسس نہیں ہے۔ ایون کہ چیئرمین نادرا بھی ہمارے ہی لیفٹیننٹ جنرل ہے، حاضر سروس، اتنی ایکسس ایک امپلائڈ کو ہرگز نہیں ہے نادرا کے کہ وہ آرمی پرسن یا کسی گورنمنٹ ہائی رینک پرسن کی ڈاٹا ریکارڈ ڈیٹیلز نکال سکے، چاہے وہ 100 بار ہمارا آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں، دے آر ناٹ کیپیبل ٹو اوپن دا لاک ریکارڈ آف دا نادرا ڈاٹا بیس آف آرس۔ ہمارے ریکارڈ نکالنا اتنے ایزی نہیں ہے، کیونکہ راجہ صاحب دو تین مرتبہ جب آپ، یہ ایک نادرا کا ایک سسٹم ہے کہ جب ایک گورنمنٹ کوئی بھی امپلائی کسی بھی رینک والا کسی کے شناختی کارڈ نمبر انٹر کرتا ہے اور اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی گورنمنٹ امپلائر کی یوزر ڈیٹیلز ریکارڈ نادرا کے دفتر میں رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں جیسے ہی وہ اوپن کرتا ہے، اور وہ جو ڈیٹیلز ریکارڈ ہیں سب سے پہلے میرے آئی ڈی کارڈ کی میرے پاس آتی، میں نکلوا لیتی ہوں، میرے پاس آ جاتی، तो राजा साहब मैं सिर्फ यही बात कहती चलूंगी कि जिस तरह की पावर है मेरे पास, मुझे आप किसी भी बंदे का नाम लें, हमें एक्सेस है, पाकिस्तान आर्मी वालों को ये एक्सेस है कि ऑनलाइन किसी भी सिम, नेशनल इंटरनेशनल नंबर की भी हम डिटेल निकाल सकते हैं, उनकी कन्वर्सेशन कॉल भी निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी इंटरनेट के ऐप से हुई हो, हम कन्वर्सेशन कॉल भी निकाल सकते हैं, हम उनके कन्वर्सेशन मैसेजेस भी निकाल सकते हैं। मेरे पास सबके रिकॉर्ड हैं, खास तौर पे उनके जिन्होंने ये हरकत हमारे डाटाबेसिस से की है नादर आके। राजा साहब ये जर्फ है मेरा कि मैं अगर नुकसान पहुंचाने में आऊं तो उनके लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ कि ये किस घटिया लेवल तक जा रहे हैं, ताकि हमारा ये भी बात जानते हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वो कोई भी हो, कोई पॉलिटिकल पर्सन हो या कोई आर्मी पर्सन हो। जब हमारे रिकॉर्ड्स में जाके हमारी डिटेल निकालने की कोशिश की जाती है तो डिटेल निकालने वाले एम्प्लॉय का भी रिकॉर्ड हमारे पास आता है, और इनकी कॉल टैपिंग, कॉल सर्विसेज, चाहे वो नंबर फ्रांस, इटली, स्पेन का हो, डेनमार्क का हो, दुनिया में किसी भी सिम का रजिस्टर्ड नंबर हो, व्हाट्सएप कॉल हो, व्हाट्सएप मैसेजेस हो, हम उसकी 1 सेकंड में डिटेल निकाल सकते हैं। और राजा साहब कभी आपने सर्विस हमसे आजमानी हो, मुझे किसी बंदे का बोलिएगा, मैं उसकी आपको पैदाइश से लेके अभी तक की जितने सिम से पहले से मैं भी रखी होंगी, उसके एक एक कॉल्स, एक एक मैसेजेस रिकॉर्ड आपको सेंड करूंगी, आप हैरान हो जाएंगे डेट टाइम के साथ। पाकिस्तान आर्मी को इतनी बड़ी एक्सेस है। ये मैं आपके प्रोग्राम से ये बात कहना चाह रही हूँ कि जो सोशल मीडिया में हमारे जनरलों के ऊपर मुहिम चलाते हैं ना, फलाने की बेटी, फलाने का, ये आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ये कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना ये भी जानते हैं कि ये हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे, हमें इनकी सोच से भी ज्यादा एक्सेस है। ये मैं एक इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहती थी, जो हमारे फॉरवर्ड्स में हमें एक्सेसिबिलिटी मिली हुई है ओवरसीज को सेट करने की।
1: बहुत शुक्रिया जैनिश, आपने कीमती मालूमात दी, अच्छा किया कि सबको इस मालूमात का पता चल गया।
0: बहुत शुक्रिया राजे साहब आपका भी हमें टाइम देने के लिए।
1: सामान नाजरीन, आपने सुना इन्फॉर्मेशन के हवाले से ये प्रोग्राम था, हमारा किसी मुतफिक करना जरूरी नहीं है, इंशाल्लाह दोबारा नए प्रोग्राम में दोबारा आपके साथ शामिल होंगे। चले जैनिश, अब हमें टाइम इजाजत नहीं दे रहा, तो आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया, हमारे चैनल को दिया, अपना टाइम दिया, हमें इन्फॉर्मेशन दी, सॉलिड इन्फॉर्मेशन दी, तो आप ओवरसीज के बारे में खुद क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज उनको देना चाहती हैं?
0: राजा साहब ओवरसीज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, ये कोई आसमान फाड़ के नहीं उतरे जमीन में, हर बार हमें नहीं कोई प्रोमिनेंट करें,
1: रेमिटेंस भेजते हैं
0: पूरी दुनिया को। क्लियर, मैं आपसे एक बात करूंगी कि दुनिया में किसी भी इंसान को अपना अगर फॉलोअर बनाते हैं या किसी को भी फॉलो करते हैं या किसी भी दुनिया में इंसान को आप तरजीह देते हैं कि भाई हमने इसकी शनाख्त रखनी, बेसिकली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है आप उसकी शनाख्त को कैरी करते हैं, कोई भी दोस्त अहबाब है, कोई भी इंसान है जो साथ उठता बैठता है उसके साथ आप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये जरूर जांच पड़ताल कर लें, ये थोड़ा सा समझ लें कि कल को ये बंदा खराब निकल आए तो हमने उसकी खराबी को डिफेंड करना है या फिर हमने उस जगह से किनारा कशी करनी है। अगर ये डिफरेंस इनको फैसलों में पता चल जाए ना राजा साहब, तो इनकी चीखें निकलना बंद हो जाए। इतनी एडवांस कंट्री में रहते हैं और हरकतें इनकी गांव कस्बे से भी नीचे थर्ड क्लास किस्म की हैं। आधे से ज्यादा पाकिस्तान का इमेज मॉनिटर जो होता है वो ओवरसीज से होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पासपोर्ट को कैरी करके बैरून मुल्क में जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ लाइफ के लिए, लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट ऑफ माइंड भी जरूरी है। सिर्फ लाइफ डेवलपमेंट करने से सब कुछ नहीं होता, डेवलपमेंट ऑफ माइंड भी करना जरूरी होता है। दूसरा राजा साहब, मैं आखिर में ये कहना चाहूंगी कि आपका ये जो इंटरव्यू है फर्स्ट रिव्यूड बाय द चीफ होगा, और ये भी मैं आपको बता दूं मेरा पूरा इदारा देखेगा, तो मुझे कोई किसी तरह का डर नहीं है, ना मुझे फौज ने कुछ कहना है, मैं टोटल रियलिस्टिक बात करती हूँ, रियलिटी पे बात करती हूँ। पैगाम मेरा यही है कि किसी की भी इमेज को डिफेंड करने से पहले या अपने आप को किसी गलत रो में लेके जाने से पहले 100 बार सोचा करें, चाहे ये पाकिस्तान में रहने वाला बंदा हो, पाकिस्तान के बाहर रहने वाला बंदा हो, थिंक 1000 times बिफोर यू टेक डिसीजन। एक छोटी सी ब्रिटिश एक एग्जाम्पल है जो शायद इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी, इफ 100 lion लीडर इज अ डॉग दे विल फाइट लाइक अ डॉग, बट इफ 100 dogs लीडर इज अ लाइन they will fight like a lion. Whenever you will select a leadership, think 1000 सेवन टाइम्स बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। लीडरशिप को प्रमोट करना बंद कर दें, किसी भी लीडरशिप को, ना सियासी ना किसी आर्मी के। अपनी जिंदगी को भरपूर इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें, अपने टाइम को इंजॉय करें। दुनिया जो कि झूठ है, मौत हकीकत है, इस चीज को अगर समझ ले तो गलत फहमियों का शिकार होना बंद हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक मैसेज विच आई वॉन्टेड टू गिव टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। थैंक यू राजा साहब, आपका हमें
1: आपका जनिश बहुत शुक्रिया। आपने काफी लंबा टाइम हमें दिया, काफी आप मसरूफियात थे आपकी होती हैं, मुझे इसका अंदाजा था, लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू जी सो मच राजा साहब।
1: नाज़रीन, ये थी जैनिश खान साहिबा जो कि पाकिस्तान आर्मी से तल्लक है उनका, वो आपको इंटरव्यू दे रही थी। उस इंटरव्यू में जो कुछ उन्होंने कहा, हमारा तो किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है, तो आपने खुद सुना, खुद अपने कानों से सुना, तो इंशाल्लाह रابطہ रहेगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदार आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। सामने नाज़रीन, जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है हम कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करें, जहाँ से भी हमें मिलती हैं। छुट्टी वाला दिन है तो इस वक्त साबका पार्लियामेंट के मेंबर और एक्टिविस्ट मलिक सिकंदर सदीक, जो मौजूदा सिटी काउंसलर भी हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मलिक सिकंदर, आपको एक बार फिर अदार आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जनाब राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: सिकंदर, आप हमारे सामान्य नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है पार्किंग के हवाले से। अक्सर मैं सबसे बात करता हूं, आपसे तो ज़्यादा बात करता रहता हूं, जो भी हमारे मेहमान आते हैं मैं पार्किंग की बात करता हूं, आप मसाइल उठाते रहते हैं और दबंग तरीके से पार्लियामेंट में भी उठाते रहे और आप कम्यून में आप बैठे हुए हैं, तो ज़रा पार्किंग के बारे में कोई अगर खबर है तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें।
2: देखें, बात यह है कि जो कोपेनहेगन में आते हैं या रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं या जिनके पास गाड़ी है, वो इस बात से बखूबी, उनको इस बात का पता है कि यहाँ पे कोपेनहेगन कम्यून में पार्किंग ढूंढना ये किसी वो क्या उसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से वो कम नहीं है, इस ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। तो मैंने जब ये एक इशू है और मैंने इसलिए इस इशू को पे जरा रिसर्च किया, फोकस किया अपनी टीम के साथ, और इस पे बड़ी दिलचस्प सी एक सूरत हाल हमारे सामने आई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्किंग ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और हमें ये पता चला है, हमने जब फिगर्स एंड फैक्ट्स देखे हैं उसमें हमें ये पता चला है कि ऐसे बहुत सारे कोपेनहेगन में लोग हैं, और वैसे मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूंगा, आप देखें कि इसके बावजूद के पार्किंग नहीं मिलती तो ये जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं स्पेशली इनोसलिस्ट एलचैनचु और एसएफ रेडिकल विनिस्ता, ये इसके बावजूद जो है पार्किंग मजीद जो है वो काम कर रही है और लोगों को बहुत इशू होता है। तो हमने इस पे जरा रिसर्च की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने इस पे काम किया है, तो हमें पता ये चला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस शहर में जो इंट्रा उस्तापो, इंट्रा विस्तापो, इंट्रा नापो और ये जो अंदरून शहर है इसके अंदर रहते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि अमीर लोग हैं, लेकिन ये इनके पास ये जो साइकिल होती है खैर साइकिल 50,000 की रखी हुई है और ये आम दिनों में साइकिल पे जाते हैं, लेकिन इन्होंने सब ने हमने वो मैंने एक नई टर्मिनोलॉजी निकाली है जिसमें मैंने कहा कि ये फ्रिचस पीला रखी हुई है, यानी कि इन्होंने ऐसी गाड़ियां रखी हुई हैं जो महीना महीना जो खड़ी रहती है और कभी महीने में एक बार इन्होंने समर हाउस जाना होता है तो ये उधर इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझ ले कि इनके पास गाड़ी आउट ऑफ नेसेसिटी नहीं है, जरूरत के तहत नहीं है, इनके पास पैसा है, आमतौर पर साइकिल चलाते हैं, इन्होंने समर हाउस रखे हुए हैं तो इसलिए उन्होंने गाड़ी भी रखी हुई है कि जिसको वो जब दिल करे रिक्रिएशन के तौर पर गाड़ी को यूज करते हैं। अच्छा, एक तो ये तबका हो गया। अब दूसरा तबका ये है कोपेनहेगन में जो आप समझ लें कि जिनको गाड़ी की जरूरत है, डेली बेसिस पे जरूरत है, वो कौन हो सकता है? वो मिसाल के तौर पे खस्तीने हो सकती है जो सोशल असिस्टेंट है, यानी कि जो बूढ़ों का ख्याल रखती है, और वो अब रहती कोपेनहेगन के आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन वो उसने जाना होता है हर्सहोल्म, वहां पे उसने ड्यूटी देनी होती है, शाम को वो घर आती है रात को तो पार्किंग नहीं मिलती, या मुस्तफा हो सकता है, अब्दुल्ला हो सकता है जो किसी फैक्ट्री में काम करता है टॉस्टोप में खालस्टोन में, और रात को घर आता है, उसको गाड़ी इसलिए जरूरत होती है और उसको फिर पार्किंग नहीं मिलती। ये दो आप समझ लें कि कॉफ सागी दो कैटेगरीज है जिन्होंने गाड़ियां रखी है, लेकिन जिन्होंने इशू क्रिएट किया हुआ है मैं समझता हूँ कि वो लोग हैं जिन्होंने फ्रिचस गाड़ियां रखी है, ये जिनका मैंने अभी आखिर में जिक्र किया, जिन्होंने जरूरत के तहत रखी है उसको मैंने उस उन पेपरों में भी जो हम तैयार करते हैं उसमें मैंने उनको कहा कि ये नोवेंटी स्पील, एक फ्रिचस स्पील, एक नोवेंटी स्पील। और हमने इलेक्शन के दिनों में भी ये बात कही थी कि हमारा ये दिल है, हमारा ये ख्याल है कि जिन लोगों के पास 9-10-12 मिलियन के मकान है, कोपनहेगन में, उन्होंने साइकिलें रखी हैं, गाड़ियां फ्रीचर से रखी हैं, इनको आप ज्यादा जो है पान पिस्कैरा करें गाड़ियां रखने के लिए, और जिन जो लोग एक आम तबका है जिसको वर्किंग क्लास लोग हैं, आप आर क्लास जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है, उनको आप बिपोआ लाइसेंस में मजीद छूट दें, ताकि ये जो अमीर लोग हैं, जो विल है उन्हें लोग हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी जो ये फ्यूचर्स पील है इसको खत्म की जाए, और जिन लोगों ने नेसेसिटी के तहत गाड़ी रखी है, जरूरत के तहत रखी है, उनके लिए बेहतर से बेहतर हालात पैदा किए जाए। इसलिए आप नोट करेंगे, आप देखेंगे कि अक्सर कोपनहेगन में भी इन्होंने ये इल और तील पील का सिस्टम रखा हुआ है, और आप रात को गाड़ी पार करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये खाली होती हैं, ये जो तेल पील वाली पार्किंग होती है, एल पील वाली पार्किंग होती है, और आप उसको जिस बंदे ने आम कार रखी है उसे जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए हमने इलेक्शन के दिनों में कुछ प्रपोजल्स दी थी कि भाई ये जो एल पील और तेल पील फकेंगे इसको रात को फ्री कर दिया जाए, अगर यहाँ पे ये एल पील और तेल पील नहीं खड़ी तो जिस बंदे ने आम गाड़ी खड़ी करी मिसाल के तौर पर 6 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, आपको इजाजत होनी चाहिए कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार कर सके। तो अलबत्ता बात यह है कि हमने ये महसूस किया, मैंने ये देखा कि कोपनहेगन कम्यून में आप समझ लें कि 2 पार्टीज हैं, एक ये लेफ्ट विंग पार्टीज हैं जिनका वोटर ये अखतीमी का है, जो इंटरव्यू में रहते हैं, जिनके पास पैसा है, ये इनके वोटर है, तो इस वजह से ये कहते हैं पार्किंग हटाओ, पार्किंग हटाओ। और फिर उसके तरफ दूसरी जो पार्टी है वो है खुद से अच्छी बगाली लियांग से भरा, ये इनका दिल है कि पूरे शहर को एक पार्किंग बना दो। मैं समझता हूँ ये दोनों गलत है। इंडिपेंडेंट ग्रीन्स फ्री कॉयर ने, हम लोगों ने एक आप समझ लें एक हिकमत अमली के तहत एक हमने एक ओपिनियन और एक स्टैंड लिया हुआ है कि पार्किंग जो होनी है वो गतफहरी पार्किंग होनी चाहिए, ना एक सारे शहर को पार्किंग बना दो तो ना एक सारे शहर से पार्किंग खत्म कर दो। या कौन से मम्मा, तो उसमें अच्छा दो मुझे सॉरी, तो उसमें हमने ये कहा है कि जिनको जरूरत नहीं है गाड़ी की और जो बहुत कमाते हैं वो ज्यादा क्या कहते हैं पेमेंट करें, और ज्यादा जो है उन पे आप उनकी पार्किंग पे गाड़ियों पे फोकस करें, तो जो वर्किंग क्लास है उनको जो है सहूलत दी जाए और उनके लिए पार्किंग की बेहतरी जो है वो लाई जाए। तो इसलिए मैंने देखा है कि कई सालों से ये कोपनहेगन कम्यून में ये पार्किंग पॉलिसी जो है ना ये ऐसी है कि ये जो वर्किंग क्लास है उसको उसके लिए सजा बन चुकी है। तो मैंने इस वजह से तलब किया है जो कोपनहेगन की मेयर है लीन पावरफुल इनस्लेशन की छिकनी का मिलियो की जिसके अंडर ये पार्किंग आता है, उसको मैंने थर्सडे के दिन तलब किया हुआ है, और वहां पे मैं उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, और उस पे बेसिकली मैंने उनको इस बात पे तलब किया हुआ कि आप बताएं कि जो आप लोग कई सालों से ये पार्किंग पॉलिसीज रखी हुई है इससे क्या जो वर्किंग क्लास है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आया है, आपने कभी इस पे फोकस किया है, और हम आगे क्या कर सकते हैं कि इस पार्किंग के इशू को गद्दारी पार्किंग की पॉलिसी जो है वो हम अपनाएं। और ये बहुत बड़े मैं समझता हूँ बड़ी दिलचस्प डिबेट होगी।
1: सिकंदर आपने चूंकि उनको एक जो है वो सियासी तौर पर जो एक होता है प्रोटोकॉल तलब किया हुआ है, लेकिन इस बात को भी आप नोट कीजिएगा, ये वेस्टर्नब्रो की गेट पता हूँ जहाँ नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं इनके नीचे बहुत बड़ी पार्किंग होती है, बहुत ज़्यादा पार्किंग होती है, लेकिन वो बिल्डिंग के लिए पार्किंग नहीं होती, वो उनको महंगी देते हैं इसलिए वो बाहर पार्किंग लेकर गाड़ियों को बाहर पार्क करते हैं। अगर आप पार्किंग में देखें तो बाहर टेस्ला गाड़ी पार्क हुई होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क की होती हैं, और उनके अंदर हैंडीकैप जो है स्किल्ड पड़ी होती है। मुझे ये समझ नहीं आती जो बाहर बने होते हैं उनके बाहर गाड़ियां ही गाड़ियां होती है, रात 12 बजे 1 बजे तक, उस पर कानून की पाबंदी ये लोग नहीं करते। तो ये लोग ये या तो ये सरमायादार हैं सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं।
2: बिल्कुल ऐसे ही मैंने ऑब्जर्व की है बात, और मैं असल में अब ये हम एक प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें मैंने सबसे पहले उनको तलब करके मैं उनसे पूछूंगा कि आप बताएं ये पार्किंग के सिलसिले क्या है। इसमें मुझे जो हमारा जो एंड गोल है वो ये है कि हम अब एक प्रेशर क्रिएट करेंगे इन पार्टीज पे और मेयर पे, और हम इसे कहेंगे कि आप जो है ये जिस तरह के आप बता रहे हैं, मैंने तो अभी आपको बताया कि ये एलपीला और जो होती है ये खाली खड़ी होती है रात को, इस पे फिर भी आप पार्क नहीं कर सकते। आप अभी बता रहे हैं कि इन्होंने जो नए मकान बनाए हैं फ्लैट, इनके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, उसको इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको अगर हम
1: वो
2: एड्रेस
1: रात
2: करें,
1: को बिल्कुल खाली, तकरीबन खाली
2: बिल्कुल
1: होती हैं वो।
2: बिल्कुल, तो हम अगर इनको एड्रेस करें तो काफी सारी पार्किंग जो है वो निकल सकती है। तो इसीलिए हमने अब मेयर से, सबसे पहले सवाल ये है कि मेयर खुद बताए क्या वो समझती है कि ये पार्किंग के जो पॉलिसी इन्होंने रखी है ये सही है, और अब आगे क्या किया जा सकता है इस चीज को बेहतर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सच्ची जो बात है, कोपनहेगन कम्यून में ये बहुत बड़ा इशू है। फर्क सिर्फ ये है कि ये उन लोगों को के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो वर्किंग क्लास है, जो शायद ज्यादा उस तरीके से ज्यादा कमाते नहीं है, उनकी फिर आवाज भी कोई नहीं है। क्योंकि जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं कोपनहेगन में, उनका अगर आप वोटर देखें तो ये काफी जो रिच लोग हैं जिनके अपने मकान है, जिन जो अच्छा कमाते हैं, ये जो अकतेमी का आप कह लें, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट ग्रीस में, फ्री कोने में, हमने ये तहैया किया हुआ है पहले दिन से, और अब हम कोपनहेगन कम्यून में भी है, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि हम आम लोग लोग जो है हम उनकी आवाज बनेंगे। इस पार्किंग के इशू में इन आम लोगों का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो हम अब कम्यून में आए हैं तो हमने अब इस चीज को उठाया है, और हम इंशाल्लाह ताला इस पे मजीद काम करेंगे, और इस पे हम जो आम लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, उसकी हम नुमाइंदगी इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो थर्सडे के दिन ये डिबेट होगी। मैं आपको राजा साहब एज अ चेयरपर्सन इदारा आपकी आवाज, आपको दावत देता हूँ कि आप आए और आप ये डिबेट देखना, ये बहुत दिलचस्प डिबेट होगी, और इस पे बहुत जो है मैं समझता हूँ कि वहां पे दिलचस्प सी डिबेट होगी, क्योंकि ये एंगल किसी ने कभी उठाया नहीं है। या तो वो जिस तरह की मैं आपको बता रहा हूँ
1: सिकंदर,
2: ये
1: एक और
2: दो,
1: बात भी कर लें कि जो लोग टाउन हॉल में आते हैं इनवैलिड पार्किंग के लिए, वो तो थोड़ी देर के लिए टाउन हॉल काम के लिए आते हैं, तो उनके लिए जो पार्किंग खाली पड़ी होती है उनको ये इजाज़त मिलनी चाहिए, चाहे जाए कि जो कम्यून में होते हैं उनको इजाज़त होती है।
2: नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस तरह की बहुत सारी जो है ना छोटी छोटे रास्ते हैं पार्किंग को बेहतर करने के लिए, यानी कि गाद फैरी, ये नहीं कि हमें ये भी नहीं, हमने क्लाइमेट का भी देखना है और हमने फ्यूचर का भी देखना है, ये नहीं कि पूरे शहर को आप एक पार्किंग ही पार्किंग करते हैं, लेकिन जो एक जरूरत है उसके तहत तो यार करे ना। और इतनी महंगी आप लोगों ने यहाँ पार्किंग कर दी है कोपनहेगन कम्यून में, इसको जरा आप सस्ता करें। तो इस पर बहरहाल डिबेट होगी, ये हमने तलब की है, और मैं अभी थोड़ी देर में
1: इसके
2: प्रेस
1: अंदर ये
2: रिलीज
1: भी
2: जारी
1: जरा
2: करने
1: पता
2: जा रहा हूँ।
1: कीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक की पार्किंग बाहर लगी होती है, जो उन्होंने वो डंडे खड़े किए होते हैं, ये तो पैसा कमाने वाले होते हैं या कम्यून के डंडे हैं सारे ये?
2: ये कम्यून के भी होते हैं, ये कम्यून के भी होते हैं, लेकिन देखे ना वो अक्सर खाली खड़े रहते हैं ना। अब रात को मिसाल के तौर पर आप वेस्टर्न पे रह रहे हैं, रात को आप शाम को घर आए फैमिली के
1: वो
2: साथ
1: सारे खाली
2: कहीं से,
1: होते
2: हाँ,
1: हैं।
2: अब आपको पार्किंग नहीं मिलती, और आगे आपके आगे 10 पार्किंग इस तरह फ्री होती है, वो खाली पड़ी होती है। तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई ऐसी गलती है सिस्टम में जो ये पार्किंग जो है वो सही नहीं कर सके। और मैं ये समझता हूँ इसलिए है कि इन्होंने अपने अपने स्टैंड लिए हुए हैं, आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिए हुए हैं, जहाँ लेफ्ट विंग पार्टी जो कहती है नहीं सारी पार्किंग खत्म करो, हर तरफ पार्क बनाओ, और जो राइट विंग है वो कहती है नहीं सारे पार्क खत्म करो, मतलब एक कॉफ्ट साग और हर तरफ ही पार्किंग बनाओ। हम कहते हैं कि नहीं, जहां जिनको जरूरत है उनके लिए सहूलतें होनी चाहिए, और ये जिन लोगों ने फ्रीचर्स गाड़ियां रखी हुई हैं, ये जो अमीर लोग हैं कोपनहेगन में जिन्होंने फ्रीचर्स गाड़ियां रखी हुई, सबका नाटक बंद किया, इनके ऊपर आप सख्ती करो, इनके आप पैसे बढ़ाओ। ये भी आप कानून इजाजत नहीं देता, कोपनहेगन की जो सेल्स जो लॉ है वो इजाजत नहीं देता। ये सारी चीजें मैं अब इनसे बात करूंगा और इनसे सवाल जवाब करूंगा, और इसको हम इसकी हम तय में जाएंगे, और इसको हम भरपूर जो है ना इस पे हम फोकस करेंगे। और मैं अभी कुछ ही देर में भी ये आपसे बात खत्म करके तो मैं अभी प्रेस रिलीज जारी करने लगा हूँ, जो कि आप अखबार में देखेंगे, जहां पे मैं ये कहूंगा कि मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो लेफ्ट विंग पार्टीज है जिन्होंने वर्किंग क्लास की रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करनी थी, वो इनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, इस वजह से ये कोपनहेगन के हालात पार्किंग के हवाले से खराब हो रहे हैं।
1: सिकंदर, बात देखा ना, चूहे होते हैं वो मट्टी को जो है खुरचते रहते हैं, खुरचते रहते हैं, तो सियासी तौर पर लोग आपको भी खुरचते रहते हैं।
2: हाँ जी, वो देखें वो चीज जो है वो चलती रहती है और चलती रहेगी, और यही बात होगी ना कि जिस दिन फिर लोगों ने ये करना छोड़ दिया तो समझे फिर आप रेलेवेंट ही नहीं है। تو یہ بھی ایک سیاست میں چیز یہ ساتھ چلتی
1: رہتی ہے۔ سکندر آخر میں آپ ڈینش میں کیا میسج دیں گے؟
2: دیکھیں میں یہ کہن سی تھے ایلے ای کیوبرہاؤنس کمون ات دن اودویکلنگ وی ہا سیٹ دی سسٹم مانگ او دن ففائلڈ پارکنگز پولیٹیک وی ہا سیٹ دی سسٹم مانگ او دن ہا دی نیگیٹو کنسیکوئنسز سیلیٹ فار آرباٹر کلاسن سیلیٹ فار دیم دا ہا منسٹ سیلیٹ فار پنشنیسٹن سیلیٹ فار دیم مٹ ہینڈیکپ اور دی این اودفورڈنگ فار دی یس سی ای کیوبرہاؤنس کمون ات دی ہا ٹو لائر تو ہا دن ایٹابلیرڈ وینسٹر فلوئے پون دین سائیڈ دا ideologisk set bare vil nedlægge alle parkeringer, fordi man taler ind i en bogdagsorden, man taler ind i en dagsorden i forhold til klima, fordi det er det, akademikeren vil have. På den anden side, så ser du, hvad hedder det, højrefløjen, som vil plastre hele byen til med parkeringspladser. Den sunde fornuft er simpelthen forsvundet i den her debat. Og det er der, vi i Frie Grønne siger, at vi vil indtage den position, der hedder, at dem, der har fritidsbilerne, og her taler jeg om de rige, velhavende akademikere, der har lejligheder på Indre Vesterbro, Indre Nørrebro, Indre Østerbro, med en kassecykel til 50.000, naturvin i glasene, og en fritidsbil, de bruger en gang om måneden for at komme på i sommerhus. Det er dem, der er udfordringen her. Det er ikke arbejderen, det er ikke Lonnie, som er socioassistent og kommer hjem efter en lang nattevagt. Det er ikke Mustafa, som er produktionsmedarbejder, som kommer hjem på skæve tidspunkter og døgnet ikke kan finde en parkering. Det er ikke dem, der skal belastes. Jeg mener, det er fritidsbilismen, der skal ud af byen, og det er nødvendighedsbilismen, som skal forblive, og det er dem, man skal arbejde for at få en retfærdig og ordentlig parkering. Jeg mener personligt, Frie Grønne mener personligt, at det er en forfejlet parkeringspolitik, som ikke har været retfærdig og haft negative konsekvenser for arbejderklassen. Og det er det, jeg har indkaldt vores teknik- og miljøborgmester, Line Barfod, som er chef for området, for at spørge hende om, hun mener, at parkeringen har haft utilsigtede konsekvenser, og hvad vi kan gøre for at rette op på den her mange års forfejlede parkeringspolitik. Tak for ordet.
1: Skander, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے.
2: شکریہ جی.
1: سامعین ناظرین, یہ تھے ملک سکندر صدیق کے, جو کہ کوپن ہیگن کمیون کے بارے میں بتا رہے تھے. سامعین ناظرین, آپ کے مطالبات ہم اکثر جو ہے وہ لیڈران سے ملتے ہیں, جو کمیونٹی کے لوکل مسائل ہوتے ہیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. پارکنگ کا مسئلہ ہے, جینون مسئلہ ہے, کوئی اس پر بولتا نہیں ہے. بڑی بڑی گاڑیاں شہر کے اندر ہوتی ہیں, اسپیڈ ان کی 20-30 تک رکھی ہوئی ہے, 40 تک میکسیمم رکھی ہوئی ہے, لیکن گاڑیوں کی اسپیڈ جو ہے وہ 250 تک ہوتی ہے, میٹر میں 200 تک ہوتی ہے. بڑی بڑی گاڑی ہیں, آپ جا کر دیکھ لیں. یہ جو کونوں میں, گھروں میں کونوں کے پاس پارک بنے ہوتے ہیں نا, سب سے زیادہ یہ بار بنے ہوتے ہیں, ان میں زیادہ زیادہ لوگ آتے ہیں گاڑی پارک کر کے اور یہاں بیٹھ کے جو ہے, ظاہر ہے ان کا ایک ٹریڈیشن ہے, کلچر وائز جو ہے بیئر پینا, کولا پینا, سوڈا وٹ ڈانس کرنا. تو یہ ٹائم کی بھی پابندی نہیں کرتے, حالانکہ بلڈنگ کے ٹائم ہوتے ہیں 10 بجے کے بعد ہر چیز کو کلوز کر دیا جائے. یہ اندر سے باہر سے کرسیاں اٹھا کے کمروں میں اندر لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ گاڑیاں باہر کھڑی رہتی ہیں. جس طرح ملک سکندر صدیق ذکر کر رہے تھے, کوئی بندہ کام کر کے آتا ہے اس کے لیے پارکنگ نہیں ہوتی, کوئی انویلڈ ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے پارکنگ نہیں ہوتی. تو انویلڈ کی جو پارکنگ ایک ہوتی ہے, الیکٹرک کی گاڑیوں کی پارکنگ جو فری پڑی ہوتی ہے. تو سامعین ناظرین, خود بھی آپ اس پر نظر رکھا کریں, کمیون کے ممبران سے آپ خود بھی ڈسکس کیا کریں. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں, ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا.
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: करते हैं वो भी अपना हिस्सा डालते हैं कम्युनिटी में कि लाजमी है कम सियासत करें तो तब अपना हिस्सा डालें। जो लोग 12 महीने अपना कम्युनिटी में हिस्सा डालते हैं तो आपको भी उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे तजिया नगार एक्टिविस्ट अदनान अमीन अली हमारे साथ मौजूद है। अदनान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपकी आवाज़ पर।
1: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कैसे हैं राजा साहब आप? सारे व्यूअर्स को अस्सलाम।
0: अल्लाह का शुक्र है अदनान, आप बताएं, मौसम तो आज गर्म था, ठंडा भी था, हवा भी चल रही थी, तो क्या खबरें हैं, क्या हुकूमती खबरें हैं, हुकूमत बनने जा रही है या लोगों को निकाला जा रहा है?
1: राजा साहब, खबरें तो काफी हैं, हुकूमत के बारे में भी काफी खबरें हैं। वो नेगोशिएशन, जैसे आपको पता है कि पिछले हफ्ते कॉन्गली ओनर्स एक नया आया था और वो अपनी कीमत आगे लेके जा रहा है, तो हम देखते हैं। एक तो ब्रेकिंग न्यूज ये शाम को आई थी और अल्लाह ताला उसको सेफ दे के, हमारी जो फॉर्मर क्वीन थी वो जरा बीमार हो गई है, उसको दिल का कुछ हुआ है, तो वो अब अस्पताल लाइजिंग है। अल्लाह ताला उसको सेफ दे और उसको कहते हैं तंदुरुस्त करे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी आज शाम को, तो अब देखते हैं अल्लाह ताला उसको सेफ दे। हमारे लिए तो वो क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छी क्वीन रही थी डेनमार्क की, और जितना साल उसने क्या कहते हैं
0: तकरीबन जिससे हर तबके के लोग प्यार करते हैं।
1: अरे साहब, मैंने ऐसी क्वीन तो देखी नहीं है, और अल्लाह का शुक्र ये है कि जो चीजें उसमें थी वो उसने अपने बेटे को भी आगे दी है। बेटा भी उसी तरह है और अल्लाह ताला क्या कहते हैं दे के वो चल रहे आगे, और अब उस पर जिम्मेदारी तो इस वक्त है ना, क्योंकि वो तो किंग है और अब वो ही तो है जिसने लीड, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, पॉलिटिकल तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, सारा मुल्क को चलाना होता है, सारी चीज को लेके आगे जाना होता है, मगर एक तो उसने ही कराने होते हैं ना कि कौन कॉमली होना सुबह बनने पर स्टेट मिनिस्टर के साथ मिलके। तो अभी ये शाम को चांसलर बॉल्स ने कहा है कि तीन पार्टियां हैं जिनको मैं नहीं दोबारा बुलाऊंगा, उसमें एक है इंग्लिश लिस्ट है और एक SF है और एल चाइना ची हुआ है, तो वही देखा जाए तो वही सबको शुरू से पता था कि वो रेड ब्लॉक की पार्टीज हैं, तो उनको तो नहीं बुलाएगा। अब बाकी की पार्टियों को लेके आगे जाने की कोशिश करेगा और वो भी मुश्किल ही लग रहा है कि वो मुश्किल होगा काफी, क्योंकि मौत मिसेस में जो है ना वो काफी जिद पड़ा हुआ है। उसने कहा है कल जो उसने स्टेटमेंट दी थी उसमें इसने यही कहा था कि खाली इकोनॉमी फुल चीक पे आप ना रहे, आप उइले निंगे फुल चीक पे भी आए, और जब वो उइले निंगे फुल चीक पे आएगा तो उसके अंदर वो ये भी रहना चाहते हैं कि जो उइले स्पीच था ना उसको बंदा स्कैनर करे ना खत्म ही कर दे, और उधर जो लास्ट लू के है वो उसको बजाना चाहता है। तो फिर राजा साहब आप देख लेना कि क्लैश तो आ गया पहले ही, तो अब वो क्लैश की वजह से क्या है कि ये मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है कि ये शायद 2-4 दिन अगले जो नेगोशिएशन में ये क्लॉप्स ही ना हो जाए तो दोबारा वापस जाना पड़े कॉन्ग के पास और तीसरी गुंते करनी पड़े।
0: तो ये क्या कभी ऐसे हो सकता है कि ये जो तीन पार्टियों को नहीं ले रहा तो उसमें सोशल डेमोक्रेट इन तीन पार्टियों को छोड़कर चली जाएगी?
1: अरे साहब, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आप और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल एक ओपिनियन आई थी जिसके अंदर SF 20-23 मंत्रिता ले रही थी और सुशैल तमकत्सु पे पीछे जा रही थी, तो इसलिए सुशैल तमकत्सु को पता है कि वो इस गवर्नमेंट में चले गए तो SF और उनकी सीटें ले जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस हुकूमत में जाएंगे, वो मेरे ख्याल से ज्यादा सोचेंगे फिर हम उपिशो में चले जाएं, और वो उपिशो में चले गए तो ये गवर्नमेंट बनी तो आप समझे कि नेक्स्ट समर तक दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चल नहीं सकते। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सिनेरियो यही आना है कि रेड ब्लॉक जो है ना वो किधर ये गेम ना खेल जाए कि वो अपनी गवर्नमेंट पेश कर दें लास्ट लोके का बैग ही, तो वही मैंने जो आप पिछले प्रोग्राम में सूरत हाल बताई थी कि फिर एक तरफ 87 हो जाएंगे एक तरफ 84 हो जाएंगे, और ये सूरत हाल मैंने किसी ने सुनी नहीं है हिस्ट्री में हुई हो पहले। तो
0: क्या मिला लास्ट लूके को जो इतनी अफरा तफरी जो सियासी पड़ी हुई है, हुकूमत बन रही और जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी की जा रही है, तो इससे डेफिनेट जो है इसका तासर कोई इतना अच्छा तो नहीं जाता या जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करके चीजों को इस्तेमाल कर लिया?
1: नहीं राजा साहब, वो तो नहीं जाता, क्योंकि राजा साहब ये देखे ना इसमें यही है कि बंदा देखे ना 70 से लेके तो आज तक और पिछली हिस्ट्री बंदा देखे तो ये बड़ी जीप चीज है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है, क्योंकि जैसे अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्कूल फॉल्स कह रहे हैं कि हमने इकोनॉमी पुल चीक पे ही पहले स्टार्ट करना है।

0: मगर कल जब वो आएगा मौत में, तो स्मित कल ही आना है उसने, और देखिएगा कि टेबल में मार दी, सॉरी हफ्ते को आएगा वो, कल आएगा, मुझे अब याद नहीं कि किस तरह इसने मीटिंग रखी है, मगर नेक्स्ट टू टू डे टू थ्री डेज में सारी पार्टी ने आना है, तो वो आएगा तो वो कहेगा कि मैंने उल्ले नहीं फुलसी पे बात करनी है, तो होगी ना फड्डा पड़ गया, क्योंकि वो इकोनॉमी पे बात करना चाहते हैं, ये उल्ले नहीं फुलसी पे बात करना चाहते, तो पड़ गया ना क्या कहते हैं मसला, कैसे आगे जाएंगे ये तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही। लास्ट लोगों का ये था कि मैं प्रेशर करके अपनी मीरा का गैंग बना लूं और मैं वाह वाह वाह कर लूं क्योंकि मेरा है, मगर लास्ट में को ये भी सोचना चाहिए कि मैं नहीं होता, ये पार्लियामेंट ऐसी बन गई है कि इसमें सबको क्या कहते हैं कुछ के गिवन एंड टेकन है, एक ये नहीं कि तुम दरख्त में चढ़े रहो तो तुम नीचे ना हो, मैंने तो कभी सुना भी नहीं है कि मना निगोशिंग करता हो तो कह रहे हो कि यही कहे कि मैंने खाली खाऊंगा
1: सारे आप मेरे टोकरे में
0: खाऊंगा,
1: डाल दो।
0: यानी कि मैं खाऊंगा नशे से बात करूंगा, ये नहीं होता। लास्ट लोगों को ये भी समझना चाहिए कि सुशील तो कुछ इतनी पागल नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे फर्स्ट ने पार्टी को भी जवाब देना है, और जब वो 3 इलेक्शन हार के आई हुई है तो फिर उसने भी सोच समझ के करना है कि उसने क्या करना है, तो इसीलिए मैं उसको सबको कहूंगा कि ये बड़ा मुश्किल है, और जो पहले दिन से बातें चाह रही हैं, पहले दिन से एनालिस हो रहा है, ये सजे होते आएगी खोंग की, ये मुझे लगता है जल्दी आएगी नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये नहीं ये मुश्किल है कि ये आगे जा सके।
1: दूसरा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप दे रहे थे कि केस चल रहा था कोई पर्दे के हवाले से, हाथ मिलाने के हवाले से, स्कूलों का या कॉलेज का, जरा वजाहत कर दे क्या केस है ये।
0: हाँ, एक वाक्य हुआ था 2019 में जिसका मीडिया में और फेसबुक पे बड़े लोगों ने लिखा है, वो ये था कि दो पक्षी खेन थे, वो एमसलो में आए थे पक्षी के लिए, और दो थे और उनमें से एक ने, दोनों ने फिर केस शुरू में लड़ा, वो ये हुआ था कि फिर उनने उनका वायल हुआ था पक्षी का वायल, उसको उनने कहा था कि हमने हाथ नहीं मिलाना, और उसके बाद फिर जो स्कूल की लीडरशिप थी ना इंस्पेक्टर, उसने बुला के कहा था कि आप हाथ मिलाएं या आपका हम कांटेक्ट कैंसिल कर देंगे जो आपकी पक्षी के, तो वो उसने फिर क्या कहते हैं वो वाकया हो गया था, फिर ये हुआ था कि लीज थिंग्स ने उन्होंने मिल के ना केस लड़ा था स्कूल के खिलाफ भी, और उन्होंने एक किस्म का कानून तक केस डाल दिया था लीज थिंग्स ने उन्होंने, और उन्होंने कह दिया था कि ये गलत है, ये इनको ऐसे नहीं था करना चाहिए, और दोनों फीमेल जिनने केस डाला था उनके हक में केस दे दिया था, एमसन कमून ने यह डिसीशन नहीं थी एक्सेप्ट की, वो हाई कोर्ट में चले गए थे, हाई कोर्ट में ने कहा था कि वो लड़कियां गलत हैं, और जो 25,000 उनको मिला हुआ था कि स्टेट नहीं लिस्ट उसने उनमें, वो उन्हें डिसमिस कर दिया था, इनमें से पे एक फीमेल थी जिसने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, सुप्रीम कोर्ट में फिर 7 जज बैठे हैं जिनमें से 6 ने कहा है कि हाथ देने पे बंदा जबरदस्ती नहीं कर सकता, मगर स्ट्रेटनिंग नहीं दी, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि एम्सलोन को मून के उसके अंदर कोई नहीं है, वो स्कूल की गलती थी, मगर इस केस का फैसला ये है कि आप किसी को जबरदस्ती हाथ देने से मजबूर नहीं कर सकते, और ये एक प्रिंसिपल बना है जिस पे बहुत सारा डिबेट चला है फेसबुक पे, क्योंकि टेस्टफॉल का पच्ची वाले कुछ के मेंबर्स ने लिखा है और कुछ और लोगों ने लिखा है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उसमें हमारे मेयर ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि जो हो गया वो हो गया, मगर बंदा मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखे ना जब कोरोना हुआ था तो उस वक्त भी तो लोगों ने मना कर दिया था ना हाथ देना, तो ये बात तो फिर गलत है ना कि आप जबरदस्ती तो किसी से नहीं ना कर सकते कि कोई बंदा हाथ देना चाहता है कि नहीं, तो इस फैसले से यही बनता है कि बंदा आगे से ध्यान करेगा कि किसी से जबरदस्ती नहीं बंदा कर सकता।
1: अदनान, आज आपके इलाके में जो है कि एक बड़ी फेस्ट थी, काफ़ी लोग थे, काफ़ी तादाद में ख्वातीन और बच्चे भी थे, तो उसमें मेरी मुलाकात हुई अपना क्या नाम है जो आपके डिप्टी मेयर हैं उनसे भी मुलाकात हुई, उसके अलावा जुहेर से मुलाकात हुई, इरफान गिलानी से मुलाकात हुई, और भी शायद कोई थे जो है, तो उसके अलावा भी बड़े लोग थे, तो मैंने नहीं देखा, शायद आप मसरूफ थे कहीं,
0: नहीं, मैं आया था
1: आपके
0: शुरू में,
1: सबका जो है
0: उसके बाद
1: मेयर थे
0: मैं,
1: उनसे भी मुलाकात हुई।
0: हाँ लास्ट काओ काओ जो है, मैं आया था शुरू में, और मैं शुरू में आया था और मैं शुरू के बाद निकल गया था, वो मैं थोड़ी देर के लिए आया था और थोड़ी देर के बाद मैं वहां से कहते हैं वाराना हो गया था, क्योंकि मेरी कोई और मसरूफियत हो गई थी तो मैं वहां चला गया था। मगर मैं वहां आया था और भूल गया हूँ। वो मस्जिद वालों ने एक क्या कहते हैं मेसे बनाया। अच्छी बात है, इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए और कम्युनिटी के लिए क्या कहते हैं जितने ज्यादा प्रोग्राम करेंगे उतना ही क्या कहते हैं बेहतर होगा हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये प्रोग्राम जो होते हैं ये, और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम इस वक्त बड़े टारगेट में हैं, तो बेहतर बात यही है कि हम जितने मेयर होते हैं कमूनों के उनको बुलाएं प्रोग्राम्स में, उनको क्या कहते हैं इन्विटेशंस दें, उनको इनवाइट करें। जैसे इंशाल्लाह ताला 23 मई को हम लोग यहाँ पे मीना बाजार करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं बकरीद, और उस पर भी हमने इन्वाइट्स किया हुआ है। और मैं व्यूअर्स को ये भी कह दूं कि पाकिस्तानी एम्बेसी भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगी है और उसके साथ और एम्बेसी वाले भी आ रहे हैं उस प्रोग्राम में। तो यही कल्चरल इवेंट्स होंगे जिससे हम अपने आप को प्रमोट कर सकेंगे और हम लोगों को बता सकेंगे कि हम क्या हैं। क्योंकि राजा साहब एक बड़ी जरूरी चीज़ है कि जैसे मैंने आपको और बड़े लोगों ने, मैं जब आज वहां प्रोग्राम में गया हूँ बड़े लोगों ने मुझे ये सवाल कुछ लोग करते भी हैं और आवाज भी पूछते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम था कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनेगा। और इसको मैंने कहा देखिए एक्सपीरियंस होता है, हमें पता था कि इस साल के इलेक्शन के मेन इश्यूज क्या आने हैं, और ये नहीं होता कि हम एक दो दिन में करते हैं, ये हमारी बहुत अरसे की तैयारी होती है और ये हम पूरा देख के चलते हैं कि कैसे है। और हो सकता है कि कमिंग डेज में मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि मैं खुद इस वक्त सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मेरा कदम क्या होना क्या नहीं होना, और इस पे मेरा बड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए जरा थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मसरूफियत दूसरी तरफ है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो जो फ्यूचर के लिए हैं और उन पे हम काम कर रहे हैं, और कम दे में उन पे फिर हम बताएंगे कि हमने क्या करना।
1: मतलब धमाका तो नहीं होने जा रहा?
0: नहीं धमाका तो नहीं हम करेंगे अभी, क्योंकि धमाके काफी हो चुके हैं इस साल और 4-5 मंथ से हो रहे हैं। तो अब थोड़ा क्या कहते हैं समर भी आ रहा है, तो समर वेकेशन है तो उसमें क्या कहते हैं देखेंगे कि क्या है और फ्यूचर में क्या होता है। ये तो अब डिसाइड तो ऐसे ही करना होता है ना कि बंदे ने सोच समझ के कुछ फैसले करने होते हैं। इस वक्त तो हमारे कुछ टफ फैसले आने हैं कम्यून के अंदर भी, तो उन पर भी हम गौर कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है।
1: अदनान, आखिर में आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपनी पब्लिक को, सियासतदानों को, कम्युनिट्स को जो है वो क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहूंगा कि हम जितना काम मिलजुल के करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे उतनी हमारे लिए फायदा है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा दें कि हमारे बच्चे देखें और हमें फॉलो करें और उस चीज पे चलें। जैसे मेरी कल बच्ची 9वीं क्लास खत्म हुई है, अब वोकेशन में जा रही है, तो वो जब देखती है ना कि एक प्लेटफॉर्म आगे आ रहा है तो बड़ी खुश होती है। तो इसी तरह मैं कहूंगा कि हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने और सबके लिए रोल मॉडल बने। इंशाल्लाह
1: अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे संडे को भी बात होगी।
0: ताला पे ठीक है राजा साहब, अल्लाह
1: ओके भाई,
0: हाफिज।
1: खुदा हाफिज। समान नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो आपको ताज़ा तरीन मालूमात दे रहे थे और आने वाले दिनों के बारे में भी आपको बहुत सारे इशारे जो उन्होंने कर दिए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। समान नाज़रीन, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए अदार आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए ला रहे हैं। 19/5/2026 का प्रोग्राम है। इस वक्त हमारे साथ एक्टिविस्ट तजिया निगार मोहतरम अदनान अली अमीन हमारे साथ हैं। अदनान, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको।
2: वालेकुम अस्सलाम दादा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कैसे हैं दादा साहब?
1: अल्लाह का शुक्र अदनान, मौसम तो बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, लेकिन बर्निंग न्यूज आप क्या ला रहे हैं?
2: ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जैसे आपको मालूम है, यहाँ पे नेगोशिएशन चल रही थी डेनमार्क की गवर्नमेंट की, और उसमें जो कांग जोनस पॉलसन, उसने एक फैसला किया कि मैं एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वी विंस्टा लिपार लांग से कंजर्वेटिव स्टूडियो पची के साथ मिलकर ये गवर्नमेंट बन जाए। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, अब देखते हैं कि कमिंग आवर्स में क्या होता है, क्योंकि रास लुके ने तो यही कहा है, ये उसने तो गुस्सा किया और वो थोड़ा शॉक में था जब उसको ये पता चल, और उसने कहा है कि ये एक फॉर पे लॉन्ग है जो उड़ नहीं सकता। तो ये तो एक बड़ी क्या कहते हैं अजीब बात होगी, और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि ये फिर बहुत ही कम सर्पली गवर्नमेंट होगी, क्योंकि इसमें खाली सिक्स ऑफ मंडेट है।
1: तो इसको क्या इतनी मंडेट से हुकूमत बना सकते हैं? 46 बंदे इकट्ठे करके हुकूमत बन सकती है?
2: बन तो सकती है, ये तो कोई मसला नहीं। उसको क्या कहते हैं, कोई स्टोरे पची है जो है बाकी की आ जाए तो फिर तो उसके पूरे हो जाते हैं ना, 90 तो नहीं होते, 87 हो जाते हैं ना उसके। मगर मेरे ख्याल से तो ये बड़ा मुश्किल है, और आज रात को 9 बजे पता चलेगा जब लास्लो के आसमूस मीटिंग में आएगा वो क्या करता है और क्या नहीं कहता।
1: तो आपकी पार्टी सोशल डेमोक्रेट की मेते जो मौजूदा केयर टेकर वजीर आजम है, वो क्या कह रही है?
2: वो कुछ नहीं कह रही, वो गायब होगी हुई है। हो सकता है कि वो भी अब वो तो देखेंगे ना कि स्ट्रेटजी क्या करनी है।
1: तो जिस तरह पहले लुके वो गायब हो गए थे, इस तरह मेते गायब हो गई है।
2: हो सकता है कि ये कमिंग आवर्स में, ये जो अभी 6 घंटे है, इसमें लास्ट लुके की और मेरे फर्स्ट की डेफिनेटली बात तो होगी अब, और हो सकता है कि मेरे
1: चांस है कि ये ऐलान कर दें कि हमारे पास अक्सरियत होगी या पूरी
2: नहीं। अभी तो नहीं ना कर सकता, ये तो अब देखें लास्ट लुके लास्ट मूसन जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। और मैं तो, मेरे लिए ब्रदर साहब बड़ा मुश्किल है कि उसके लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे उसके लिए हर सिनेरियो मुश्किल है, मगर मेरे लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो गवर्नमेंट में ना बैठे सारी उम्र। क्या कहते हैं आप देखें, वो 2001 से लेके नहीं सॉरी 2001 से लेके अली प्राइम मिनिस्टर जब हिलसोनी स्मिथ थी वो गवर्नमेंट में बाहर था उस वक्त, उसके बाद फिर एक पीरियड में वो बाहर हुआ है, फिर अब वो बैठा हुआ है, अब उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बने। और आपको ये भी हमेशा याद रखना चाहिए, इसको हर चीज के लिए 90 सीटों की जरूरत पड़नी है। तो ये बड़ी सरप्ली गवर्नमेंट है, मगर मैं तो व्यूअर्स को यही कहूंगा कि मेरा जो अंदाजा है कि शायद नया खोंगली इंतकाल आ जाए नया, क्योंकि कमिंग आवर्स में हो सकता है कि लास्ट लुके और मेरे फर्स्ट की बात तो डेफिनेटली होगी। अभी ये मान ही नहीं सकता ये दोनों आपस में बातचीत ना करें।
1: अदनान, ये सियासतदान इतने मैच्योर नहीं है कि इतने दिन भी ले लिए और हुकूमत नहीं बन रही, जो है अफरा तफरी का शिकार है ये
2: सब। अब तो हुकूमत किसी ना किसी तरह से जरूर बनेगी, और मसला ये है ना कि देखें अब तो उसने आप प्लो प्लॉक में तो एक किस्म का मीरा जो वो मीरा गैकेंग जो चाहता था वो तो डेड कर दी है, जो लास्ट लुके ने कोशिश की थी कि वो बने और क्या कहते हैं वो हुकूमत की बननी चाहिए थी जो इनकी कोशिश थी। मगर इसमें ये भी तो मसला है ना कि इसने जो चीज पेश की है, चीजें बहुत करना चाहता है, मगर इसने ये नहीं बताया कि उनके पैसे कहाँ से आएंगे। तो इधर से आप देख लें कि ये बड़ा मुश्किल है कि ये क्या करने चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड पास डिस्परेट हो गया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए।
1: और आप किसकी कह रहे हैं, जो विंस्टर पार्टी के चेयरमैन है?
2: जी, जो विंस्टर के चेयरमैन है। और अभी ये भी तो हो सकता है ना कि कमिंग आवर्स में जो है लास्ट लुके खास मूसन अब जाएगा वापस, बात देखेगा अपनी अपनी टीम के साथ, तो हो सकता है कि कमिंग आवर में वो ये कह दी कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि नया खोंगली होना से आए, क्योंकि उसने ये जो उसने बात कह दी है ना कि फॉर प्रोलॉन्ग है, इससे पता चलता है कि वो राजी नहीं है इस हुकूमत के लिए।
1: तो जब ये मीटिंग्स पे जाते हैं तो सारी बातें करते हैं, जमहूरियत का नाम चलता, जाहिर है जमहूरियत में इसी तरह होता है, इसीलिए जमहूरियत का नाम लेकर बचा जा सकता है इन चीजों से।
2: जी वही राजा साहब, मतलब राजा साहब मैं भी देखो, मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये जो इसको ये जो चीज है इसमें ये भी तो देखिए ना कि मसले बहुत हैं। आपने हर चीज के लिए ठीक है वो तीनों स्टोरे पच्चीस बन जाएंगी उसके पीछे आ जाएंगी, मगर मसला ये है कि दूसरी पार्टियां जो हैं उनके पास भी 84-85 सीटें हैं, तो वो भी तो यही चाहेंगे ना कि ये गवर्नमेंट जल्दी टूटे। तो मतलब ये है कि
1: तो कहीं ये तो नहीं है कि सीटों का इंतजार है कौन सी वजारत मिलती है या कौन सी जो कमेटियों में अच्छी जगह मिलती है, बाकी तो इस इंतजार में बैठे हुए हैं।
2: अरे यही है ना लाल साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुझे तो लगता है कि सोसलोन फॉल्स ने जैसे आप कह दिया कि मैं सारी पार्टियों के साथ वाइकिंग्स खोल ले पहनला करना शुरू करने लगा हूं। और इसको ये सोचना चाहिए कि सबर इसको ये करना चाहिए कि तुम्हें ये देखना चाहिए कि अभी लास्ट लेकर आपको कह दे कि मुझे ये चीज कबूल ही नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे? जब रात को 9 बजे वो आएगा आप उसको प्रेशराइजिंग करें, ठीक है आप उसको प्रेशराइजिंग कर सकते हैं, मगर उसने भी तो ये देखना है ना ये चीज चल सकती है कि नहीं चल सकती लॉन्ग सेक्टर पर। तो आप देखते हैं कि ये कमिंग आवर्स में क्या होता है कि ये गवर्नमेंट बनती है कि नहीं बनती,
1: बनती है या कि नहीं बनती है। इतनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त हमें न्यूज दी, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे रब्ता रहेगा।
2: मेहरबानी पे दादा साहब, अल्लाह हाफिज़।
1: समन नाज़रीन ये थे अदनान अमीन अली जो कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे। समन नाज़रीन अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप कहना चाहते हैं तो अगर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारा किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।